0: कल आज और कल उजाला रेडियो हर एक पल।
1: अरे वाह मालिक, तेरा जवाब नहीं है।

है। अरे तो लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल।

आतिफ असलम की आवाज और स्टेशन उजाला रेडियो। इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए हम लोगों के वेबसाइट आप देखें ujala.nl। नेम ऑन्स ओवरऑल में और डाउनलोड कर ले उजाला के ऐप जो है।

तुझ में रब दिखता है, रूप कुमार राठौड़ की आवाज। रब ने बना दी जोड़ी फिल्म से गीत को आप सुने और उजाला रेडियो का प्रोग्राम है ये सुनने वालों। और आपके साथ हम भी सुन रहे हैं।

0: की कमर है, तिरछी नजर है, पतली कमर है, तिरछी नजर है।
1: नाना नानी, दादा दादी, काका काकी, मामा मामी, फुआ फुफा, बहन और ए भाई, तो भी सुने है तो उजाला रेडियो।

0: उजालास सोना चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया
1: उजाला रेडियो तू जाने तो माय फेवरेट रेडियो स्टेशन।
2: उदित नारायण एंड अलका।

तरह से शान के वंश में खूबसूरत सा गीत प्रोग्राम में आप लोग सुने। मेरे सामने वाले खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है, मान ले उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं दोस्तों। अब की बार चलिए ये गीत आप सुनेंगे एन अमित कुमार।

तक तू थिया आई लव यू अमित कुमार के वांस में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुन रहे हो, शाम का पैगाम जो आप लोग सुन रहे हैं उजाला रेडियो का। एंड अब की बार लता जी एंड एसपी बालासुब्रमण्यम।

लता जी एन एस पी बालासुब्रमण्यम, आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, और यहां तक जो प्रोग्राम हमने बनाए आप सभी के लिए, यही आशा है जिस तरह से प्रोग्राम को हमने बनाए सजाए आप लोगों को पसंद आए होंगे। जब मौका मिलेगा तो फिर ऐसा ही प्रोग्राम आप लोगों के लिए हम जरूर से बना देंगे। यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम है।

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलम तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं हमारे प्यारे सुनवलो, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी हो, आप हरे को हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबादी अर्ज की जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो उनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप हरे की ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। हमारे प्यार सुनवालो, मैं हूँ सुभाष और जहां तक ये आवाज पहुंची वहां तक हम आप सभी को प्यार से, दुलार से, दिलो जान से स्वागत कर रहा हूँ। चाहे जहां पर आप लोग युवा उजाला रेडियो का प्रोग्राम को सुनते होंगे, वेलकम। उजाला रेडियो का दफ्तर का फोन का नंबर है 9 3 9 9 9 7 पर आप लोग तार कर सके हैं और हमारा कंतोर खुला रहता है फन मान दख तो तुम्हें सात नख फन 3 इन द मिदाख सोमवार से लेकर शनिवार तक 10 बजे सुबह से लेकर शाम में 3 बजे तक। और हमारा वेबसाइट का पता है www.ujala.nl या तो info@ujala.nl पर हर एक इन्फो, हर एक जानकारी आपको मिलेगा।

और हमारे प्यारे सुनने लो आज का प्रोग्राम में कुछ ऐसा गीत हम आप लोग को सुनाने वाले हैं। आशा है कि आज का प्रोग्राम भी आप लोग को पसंद आएगा। यू आर उजाला रेडियो है हमारे प्यारे सुनने वालों।

धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना और धीरे धीरे मेरे दिल को चुराना। अभी सरल सी गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने। कभी कभी ऐसा होता है यार कि मैं ये दुनिया भुला दूंगा प्यार में यार।

चाहत में मैं सब कुछ लूटा दूंगा, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी तेरी चाहत की। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने कुमार सानू एंड अलका याग्निक जी के आवाज में, यू आर उजाला रेडियो है।

वेल यार कितना मोय कितना बिजाल, बोले तू दे इजाजत तो बोले थोड़ा से तुझसे प्यार कर लूं। अदनान सामी जी के आवाज़ में

मुझे नहीं पूछनी तुमसे बीती बातें, मुकेश जी की आवाज और फिल्म अनजान राहें से। गीत को आप सुने और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो का प्रोग्राम। को इन्फॉर्मेशन के लिए आप देखे वेबसाइट पर ujala.nl।

टके मत जाना मोहम्मद रफी साहब के साथ आप सुने आशा भोसले की आवाज़ और बहुत पुरानी फिल्म 1958 इकतीन अख्तन फैफ्तख के फिल्म फागुन से निकाला हुआ गीत। और अब आशा जी के साथ मुकेश जी को आप सुनेंगे।

दोनों मिलके कागज के दिल पे चिट्ठी लिखेंगे और जवाब आएगा, जरूर आएगा। मुकेश अंदाशा जी, फिल्म का नाम तुम्हारी कसम स्टेशन, युवाड़ो जाला रेडियो।

उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको, इसे बताते ऑटो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो। और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए

ये है उजाला रेडियो सुनने वालों, यहीं से शुरू होते हैं उजाला कॉफी चाय मिदा शो। Ja, we zijn iets te later begonnen.

मुंड संस्कार होने वाला है उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

पुरानी यादों के साथ और सुंदर गीतों के संग बनती है उजाला रेडियो की प्रस्तुति।

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

अग्नि संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

बने रहिए उजाला रेडियो पर, म्यूजिक बोलता रहेगा आपके घरों में, आपके मोटर कार में या जहां पर भी आप हैं।

0: उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते हैं। ओ तो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके हैं उजाला रेडियो। और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो।
1: योर बिजनेस लाते ग्रोइन ऑफ क्लान फॉर द वोहंड स्टॉप, उजाला रेडियो हेल्प यू फॉरवर्ड। मेल नाउ info@ujala.nl। The Ujala Table, The Ujala Table, the new video and audio podcast on Ujala, special for ambitious young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Aan tafel, één role model, één hoofdgast, één captain. In de eerste aflevering gaat Jaya Chandrika Singh in gesprek met Anjani Bedi. Succes lijkt vaak vanzelfsprekend, maar achter elk verhaal schuilen keuzes, offers en moeilijke momenten. De Ujala Table zet rolmodellen met Hindustaanse roots in de spotlight. Zij inspireren, verbinden en delen tips. De eerste shorts staan nu online. En zaterdag 6 juni komt de volledige uitzending online. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey.

ऐसा है कोई दिल वाला रे, या सो इज माय लवर, जो मेरी सुल्फों से खेले रे, बाहों में मुझको ले ले रे। ऐसा है कोई दिल वाला रे, इलक गाना तो ही सब है द वन एंड ओनली उजाला रेडियो, दुनिया का मशहूर हिंदुस्तानी हिट रेडियो। मैं हूं अमित जयराम और जहां भी वहां पहुंचो गा दूं बेन खनित लेकर फाइयाओ मोई दाग। Ja, geniet lekker van jouw mooie dag en geniet lekker samen met de heerlijke hits hier bij Ujala Radio. Het is een lekker uurtje waarbij we samen genieten van de beste hits en de heerlijkste, heerlijkste Ghana. Isbar film Dhumse, or Ghana kanam he? Salame, salame.

रोके चाहे लाख समाना कह देना ये दिल है दीवाना. द सेम फॉर दर्शन रावल सामने में ज़ारा खान इन देसी हिलके गाना. या सिर्फ मोई मोई गाना हिलके गवारियर गाना है वंदाग हियर बाय उजाला रेडियो. Ja, we gaan weer even terug in de tijd naar het jaar 2011. Filmkanaam heet Shore in the City. Ik hoop zo het rustige gaan. Het is de stem van Shreya Ghoshal. Organa kanaam heet Saibo.

सात बजकर 6 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, ये उजाला रेडियो है और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। आज नए महीना जून का पहला गुरुवार है, बृहस्पतिवार है, तो हर हफ्ते की तरह आज भी आपका सेवा करने चले आए हैं लेकर प्रोग्राम दिल की आवाज। रात्रि में 11 बजे तक ये सुंदर सा प्रोग्राम जिसमें खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग्स होंगे और उनके साथ साथ भी कुछ दर्द भरे नगमाएं। उन नगमाओं से आपका दिल हम बहलाएंगे, जैसे मैंने कहा रात्रि में 11 बजे तक। तहे दिल से स्वागत है आप सभी का, जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है, आप जहां पर भी होंगे, जिस हाल में आप होंगे, बेहद खुशी है हम कि आप सभी ने चून किए हुए हैं आप ही का मन चाहत और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो पर। आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब अर्ज है। बाहर का मौसम तो काफी तेज हवा है और रहे रहे तो भी बारिश हो रहे हैं। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप जहां भी होंगे सेफ होंगे, चाहे वो घर पर हो, काम पर, मोटर कार में, जिस तरह से आप हों तो वो सेफ है। सड़क पर आप हिस्सा ले रहे हैं तो संभाल के। दिल की आवाज में मेरे प्यारे सुनने वालों, आज भी हम याद करेंगे जी हम याद करेंगे सुमन कल्याणपुर जी को, जो बीते हुए 31 मई को इस दुनिया को छोड़कर बहुत दूर चला गया। तो उनकी खूबसूरत यादें संगीत के रूप में आज भी कुछ हम लेकर आए हैं, उनके रोमांटिक सॉन्ग जो इस प्रोग्राम में जरूर से जरूर सूट करेंगे, और उनके कुछ गाए हुए डर भरे नगमाएं भी हमने लेकर आए हैं। तो ये 3 घंटे का प्रोग्राम में आप तक हम पेश करेंगे लाइव एंड डायरेक्ट स्टूडियो रतनराम से, जो ये प्रोग्राम हमेशा आप तक पेश हो रहे हैं। हमारे ये प्रोग्राम के दौरान मेरे प्यारे सुनने वालों, स्टूडियो में अगर आप ऐप करना चाहोगे तो ये मुमकिन है, हमेशा की तरह आप ऐप कर सकते हैं और जवाब भी आपको मिलेंगे 020-363-0000 020-363-0000। और रहे आपके कामों काज, जैसे कि फरमाइश, जरूरी खबरें, मौत की खबरें या जो भी जानकारी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त करना चाहोगे तो आप अवश्य दफ्तर को तार करें, दफ्तर के दिन, दफ्तर के वक्त, और वो भी दफ्तर के तार पर, या तो आप मेल करें। दफ्तर का तार का नंबर है 020-409-0007 और सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे तक आप तार कर सकते हो, और मेल आप करना चाहोगे तो ये तो लगातार आप कर सकते हैं, किसी भी दिन, किसी भी पल, किसी भी वक्त, जब भी आपको उजाला रेडियो का जरूरत पड़े। धन मेल ये नार info@ujala.nl। आपके गुमसुम रहने से हर शहर में उदासी छाई है, ये बहार आपके होंठों से एक हसीन मांगने आई है। इस गीत का इंट्रो है मेरे प्यारे सुनने वालों, एक नगमा महान सॉन्गराइटर, कवि और लिखे इंदवर साहब जी का लिखा हुआ। मैं आज का ओपनिंग सिलेक्शन पेश करूंगा हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाज में ये नगमा। शुभ रात्रि मेरे प्यारे सुनने वालों।

दूसरों को पता टूटेंगे फिर भी ये चमकते रहते हैं। दिल की नजरों से देखो दिलदार नजर आएंगे। आंख मिली नजरें मिलाने के लिए नजर तो मिलाओ, और जवानी भी मिली है दिल को लगाने के लिए तो ये दिल लगा लो, क्योंकि जिंदगानी है नाम खुशी का और खुशियां मनाओ। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, जो इंदवर साहब जी ने लिखे, बहुत खूबसूरत प्यार भरे अल्फाजे और अपने डायनामिक वॉइस में हसीनों के पुजारी किशोर कुमार ने गीत को गाए हैं। डरिंदा फिल्म से हमने आज का ओपनिंग सिलेक्शन निकाले हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, डरिंदा। और इंदवर साहब जी का एक गीत अभी हम आपको और एक जबरदस्त वाला सुनाने वाले हैं। मेरे प्यारे सुनो लो, ऑलमोस्ट 16 मिनट गुजर चुके हैं 8 बजकर। फिर एक बार आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और अदापर से स्वागत करता हूं। शुभ रात्रि आपको कहता हूं। वादा हमने किए थे कि नए महीने का पहला बुधवार सेवा करने चले आएंगे, तो मैंने किया कल और आज भी का वादा था, तो हम आपका सेवा करने चले आए हैं। लाइफ एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनाम से दिल की आवाज, और वो भी आज फिर एक बार रात्रि में 11 बजे तक। जो मुस्कुराहट मुझे दे रही हो वो मुस्कुराहट किसी और को ना देना, और जिन नजरों से मुझे देखती हो उन नजरों से किसी और को ना देखना। What a beautiful romantic song, कमाल की अल्फाजे। हसरत जयपुरी जी, महान सॉन्ग राइटर हसरत जयपुरी जी, इनकी कलम से लिखे हुए एक एक खूबसूरत शब्द गाने वाले हैं अनु मलिक जी और मुन्नी बोरा।

मिले हो तुम तो जुदा ना होना और हटा भी हो तो खफा ना होना। क्या मुझसे पहले किसी को चाहा और क्या मुझसे पहले किसी को तुमने पूछा। जो मुस्कुराहट मुझे दे रही हो वो मुस्कुराहट किसी और को ना देना। खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों। महान कवि जिसकी कई गीत अमर है वो खुद भी अमर है, हसरत जयपुरी साहब जी, इनका लिखा हुआ गीत मिलकर गाए हैं अन्नू मलिक जी और मुन्नी बोरा। फिल्म का नाम दादागिरी, दादागिरी। ये उजाला रेडियो है मेरे प्यारे से नॉलो। हर एक जानकारी इंफॉर्मेशन के लिए चेक www.ujala.nl। और कुछ लोग भी ऐप करने लगे हैं। सत्या जी सपोर्ट कर रहे हैं और कानों में कान लगाकर सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए सत्या जी। उषा दनहा शहर में भी उषा आप ही सुन रहे हैं और हमेशा जब भी आप सुनते हैं आप ऐप करते हैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और फन ऑफ द होस्ट बड़का शहर से, अम्स्टरडम शहर से सुनील जी का ऐप आए हैं। तो सुनील भैया डंके वेल आपके ऐप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी जुड़े हैं भी उजाला रेडियो से हमेशा की तरह दनहा शहर में मिक, तो मिक डंके वेल बहुत बहुत शुक्रिया आपके ऐप के लिए। और समधिनिया सुशीला चंद्रिका सिंह जी अतम सल्फेन भी जुड़े हुए हैं हमेशा की तरह। तो शुभ रात्रि आप सभी को कहते हुए, दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद कहते हुए ऐप करने के लिए मैं आपको ले चलते हैं अगले गीत की ओर। एक नगमा, जैसे मैंने कहा आज के प्रोग्राम में बहुत सारे भी नगमाए होंगे जो सुमन कल्याणपुर जी ने गाए हैं, वो खुद गाए होंगे या डुएट सॉन्ग्स हैं। पहला जो आपको सुनाने जा रहा हूं एक गीत उन दिनों का, एक खूबसूरत नगमा है द 70s का, 1973 का जो एक नगमा आनंद बख्शी जी ने लिखा और जिसको आवाज दी है रफी साहब जी, सुरों का बादशाह द लेजेंड पटना श्री मोहम्मद रफी साहब जी और सुमन कल्याणपुर, ये दोनों ने मिलकर बहुत सारे खूबसूरत गाने गाए हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। आगे चलकर हमारे ये प्रोग्राम में जरूर कुछ ना कुछ और रफी साहब जी और सुमन जी का हम आप तक पेश करेंगे, जरूर से जरूर। गीत जो हम पेश करेंगे, जीना मरना है अब दिन रात तेरे साथ और वो भी तेरे बाहों में, पेश करता हूं।

लवली सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, जीना मरना है अब, दिन रात तेरे साथ तेरी बाहों में, और चलना रुकना है भी अब रात दिन तेरे साथ और वो भी तेरी राहों में। ये प्यार भरा गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, आनंद बख्शी जी जो एक और महान कवि है, इनके बारे में काफी चर्चा हम कर चुके हैं अपने प्रोग्रामों में। महान है आनंद बख्शी जी, ग्रेट सॉन्ग राइटर, कवि लिखे, और इनका लिखा हुआ गीत मिलकर गीत गाए हैं सुमन जी और रफी साहब जी। फिल्म का नाम सूरज और चंदा। मेरे प्यारे सुनो वालों, ऐप का जो नंबर है मैं फिर दिए देता हूं, 0303 9000 9000। सुनिए दो सुनिए 3 6 3 0 8 0 8। सीधे आप उजाला रेडियो को जब ऐप करेंगे, यहाँ स्टूडियो में आपका ऐप आएगा। और जो लोग हमारे प्रोग्राम के दौरान ऐप करते हैं उन्हें मालूम है, जवाब भी मिलते हैं हमेशा। एक गीत और सुमन कल्याणपुर जी का आपको सुनाने जा रहा हूं, और वो गीत एक दर्द भरे गीत है, इंतजार वाला सॉन्ग है। द ग्रेट इंदवर साहब जी, जिनकी गीत के साथ हमने आज का ओपनिंग की थी, उनका लिखा हुआ एक नगमा सुमन कल्याणपुर जी गाएंगे, कि साथ ही मेरे साथ ही उस दुनिया से इस दुनिया तक, मैं तुझको ढूंढती आई मेरे साथी रे, तू कहाँ है। पेश करता हूं हीरो निवार दिल की आवाज में ये नगमा।

सदियों से प्यार की मैं प्यासी, प्यास बुझा से प्यास बुझा दे तू आज जरा सी। सदियों से प्यार की मैं हूं प्यासी और प्यास बुझा दे तू आज जरा सी। साथी रे तू कहाँ है, इस दुनिया से उस दुनिया तक तुझको ढूंढती आई। साथी रे सुमन कल्याणपुर जी की खूबसूरत आवाज और डर भरे नगमा इनवर साहब जी के कलम से लिखा गया जो इन्होंने गाए हैं, सुमन जी ने गाए हैं। फिल्म का नाम वीराना, मेरे प्यारे सुनने वालों। और अभी एक गीत के बाद एक और नगमा सुमन कल्याणपुर जी का। सुमन जी अब हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन उनकी संगीत जरूर से जरूर उनकी यादगार बनकर हमारा साथ रहेंगे। और जब भी रेडियो रहेंगे उनके नगमाएं चलाया जाएगा यकीनन। एक और डट भरे गीत की ओर आपको ले चलते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। एक गीत जो सुरेश वाडकर जी और अनुराधा पौडवाल इन दोनों की खूबसूरत आवाज में एक डट भरा गीत आप सुनेंगे। द लेजेंड द माइस्ट्रो समीर जी का लिखा हुआ नगमा पेश करता हूं हीर ऑन यू आर।

प्रिया प्रिया क्यों भुला दिया, बेवफा जा बेरहम, क्या कहूं तुझे सनम, तूने दिल तोड़ा है, भूल क्या हुई ये तुम मुझसे बता, अरे ओ प्रिया। सुरेश वाडकर जी और अनुराधा पौडवाल जी की खूबसूरत आवाज अभी आप सभी ने सुने, और गीत समीर का लिखा हुआ, फिल्म का नाम दिल। उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनने वालों। और चलो सेवा में एक मुकेश जी और सुमन कल्याणपुर जी का डबल पेश करता हूं, क्यों क्या ख्याल है। इन दोनों का एक डबल, और ये गीत दोनों बहुत खूबसूरत है, यकीनन आप पसंद करेंगे। तो दोनों नगमाओं के साथ आप काफी मजा ले। इन दोनों नगमाओं के बाद ब्रेक की ओर हम बढ़ चलेंगे मेरे प्यारे सुनने वालों, और ब्रेक के उस पार आप सभी की सेवा में फिर हम हाजिर रहेंगे लेकर प्रोग्राम दिल की आवाज, वो भी लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रोहतक से। मेरे प्यारे सुनने वालों, आपको मालूम भी रहे कि आने वाले शनिवार 6 जून को इस महीने का पहला है, सेवा करने चले आएंगे रात्रि में 7 से 12, 5 घंटे लगातार विद वीकेंड शो हियर ऑन यूआर सैटरडे नाइट फीवर। तो उम्मीद और आशा करते हैं कि भरपूर आप सभी भी मेरा साथ देंगे। लीजिए चलिए सेवा में वो दो नगमाएं, मजा लें, और मिलते हैं ब्रेक के उस पार मुकेश जी और सुमन जी का डबल।

अब तो हमको एक दूजे का हर पल साथ निभाना है, ओ तेरे संग ही जीना है, अब तेरे संग ही मरना है। अब तो हमें या हमको एक दूजे का हर पल साथ निभाना है। लवली रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, गुलशन बावरा जी जो भी एक महान कवि है, सॉन्ग राइटर है, इनके प्रोग्राम हम बना चुके हैं बैक टू द फ्यूचर में कुछ सालों पहले। और जिन लोगों को याद होगा, हमने इनकी बेहतरीन से बेहतरीन नगमाएं पेश किए हैं। और जो लोग को याद होंगे उन्हें मालूम होंगे कि किस तरह की नगमाएं गुलशन बावरा जी ने लिखे, जो आज तक भी एकदम पॉपुलर है। खास करके इनके गाने जो किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी ने मिलकर गाए हैं। ये था आशा जी विद किशोर कुमार का बेटा अमित कुमार, फिल्म का नाम इंद्रजीत। मेरे प्यारे सुनने वालों, 12 मिनट गुजर चुके हैं 9 बजकर, मेरे प्यारे सुनने वालों, ये है उजाला रेडियो और लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रोटरडम से। फिर एक बार पेश कर रहा हूं प्रोग्राम दिल की आवाज विद रोमांटिक सॉन्ग्स, और उनके साथ साथ भी कुछ ब्रोकन हार्ट सॉन्ग्स भी हैं। मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे, आपका यारों का यार, और आपको हम ले चलेंगे एक और जबरदस्त नगमा की ओर। एक नगमा जो वर्मा मलिक जी ने लिखा और जो मिलकर गाएंगे हसीनों के पुजारी किशोर कुमार और सुमन कल्याणपुर जी। सुमन कल्याणपुर जी अब हमारे बीच नहीं रहा, बस इनकी यादें इनकी गाने हमारे साथ हैं। इन्होंने कितने कंपोजर्स के साथ, म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किए हैं, जैसे कि शंकर जयकिशन, बड़े रोशन साहब जी, मदन मोहन होली साहब जी, एस डी बर्मन, दत्ता साहब जी, हेमंत कुमार जी, चित्रगुप्त, नौशाद, गुलाम मोहम्मद, कल्याण जी, अनान जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, वजन देसाई, उषा खन्ना, और शायद मैं कुछ लोगों को भूल रहे हैं भी। सभी के साथ भी गाए हैं द पॉपुलर सिंगर्स, जैसे कि किशोर कुमार, मोहम्मद रफी साहब जी, दादा मन्ना डे, हेमंत कुमार दादा, मुकेश जी, तलत महमूद, और ना सिर्फ हिंदी सॉन्ग्स, मराठी में भी गाए हैं, बंगाली में गाए हैं, कन्नड़ में गाए हैं, ओडिया में गाए हैं, असामीस में गाए हैं, गुजराती गाने गाए हैं। और कमाल की बात यह है कि उन्हें 2023 में उन्हें पद्म भूषण मिला है। या और इनके गाने का लिस्ट अगर आपको हम सुना दें, काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं यकीन से भी ये कह सकता हूं कि आप सभी उनके गाए हुए गाने जानते हैं और पसंद भी करते हैं। वर्मा मलिक जी का लिखा हुआ गीत, जैसे मैंने कहा, सुमन कल्याणपुर जी और किशोर कुमार मिलकर गाएंगे ये नगमा।

जी चाहता है दुनिया से दूर कहीं हम जाएं और बैठे अकेले एक दूजे को दिल का दर्द हम दिखाएं। अरे अभी अभी तो प्यार का पहला कदम है, इतनी जल्दी क्या है। रंग भरी ये महफिल, देखो लगे हैं रूप के मेले। जिनके सीने में दिल है रह ना सकेंगे वो भी अकेले। अरे बात बात में बात बना लो, फिर ये बात ना होगी। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, वर्मा मालिक जी का लिखा हुआ जो मिलकर गाए हैं किशोर कुमार जी और सुमन कल्याणपुर, फिल्म का नाम नागिन।

सात मिनट बाकी है मेरे प्यारे सुनने वालों, सरे 9 बजने में, जबकि हम आपको ले चलेंगे एक धड़ भरे गीत की ओर। नगमा द ग्रेट मजरू सुल्तानपुरी जी ने लिखा, मजरू सुल्तानपुरी जी के कलम से लिखा हुआ एक गीत शैलेंद्र सिंह जी की आवाज में। ये गीत फिल्म में पिक्चराइज नहीं किया गया, पता नहीं कारण क्यों, लेकिन बहुत खूबसूरत डट भरे नगमा है और आपको सुनाना चाहता हूं हमारे ये प्रोग्राम दिल की आवाज में, कि किसी गरीब के दिल से ये दिल लगी ना करो, इतना सितम नहीं अच्छा। शैलेंद्र सिंह जी।

किसी गरीब के दिल से ये दिल लगी ना करो, इतना सितम नहीं अच्छा, मेरी जान खुदा से डरो। शैलेंद्र सिंह जी की खूबसूरत आवाज में, वो भी मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ गीत इन्होंने गाकर सुनाए। फिल्म में पिक्चराइज नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी फिल्म का नाम आपको बता देता हूं, सितमगढ़। फिल्म का नाम सितमगढ़। आईफी जहांगीर दंग की वेल आपके ऐप के लिए, आईफी जहांगीर दम सदम जो हमेशा सपोर्ट करते हैं, चून किए करते हैं, शुक्रिया, धन्यवाद डंकीवेल। और मार्स ब्रुक में हेरेंद्र जी और चित्रा जी भी प्रोग्राम के साथ आनंद ले रहे हैं, और खास करके नगमाएं जो चल रहे हैं, काफी मजा ले रहे हैं। तो आपके ऐप के लिए बहुत बहुत डंकीवेल, धन्यवाद। बेटी जी खरोनिंग में, क्या वहां पर भी तेज हवा है बेटी जी? जरूर ऐप पर बताना, यहां तो हवा इतनी तेज है, मैं देख रहा हूं स्टूडियो के बाहर, द विंड इज वायन। मेरे सामने दो पैर है इधर से उधर भैया। डंकीवाल बेटी जी आपके ऐप के लिए। और हार्लेम शहर का आइलिन जी आपके भी आए हैं, आपको भी हम डंकीवाल कहते हैं। लेकर खनी तमें डिक्लाइन केंद्र, और आजकल इंद्रनाथ आफन फिर डाक से अल्टेट लोकम तो दून मावेल इधर उधर सुनीला ओकवत तलूर स्टेलेंड बरिख्त तो संभाल के वीस फुर्सिख्तिक। Goeie schoenen aan, goed drinken. En Eilinji, dankjewel, dankjewel. Dhanyavaad, aapke app ke liye. Ek romantic song ki aur aapko le chalenge. Aur geet itni romantic kyun hai? Kyunki milkar geet gaaye hain Anjan Sahib ji, Indavar Sahib ji aur Prakash Mehra. Ye tino ne milkar is geet ko likhe hain और गाने वाले हैं कंचन जी और नितिन मुकेश।

किसी से मिलके कोई अजनबी कैसे पल में बने जिंदगी, और जिसकी सूरत मेरी ख्यालों में थी ऐसा लगता है कि तुम हो वही, और आज मिल गई क्या खुशी, और देखो छा गया क्या नशा। मैंने तुझे देखा है कहीं पहले लेकिन याद आता नहीं कब कहां, ओ मेरी जाने मन। खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों मिलकर गीत गाए हैं, जो इंदवर साहब जी, बड़े अनजान साहब जी और प्रकाश मेहरा ने मिलकर लिखा, नितिन मुकेश जी और कंचन। फिल्म का नाम मीठा जहर। मेरे प्यारे सुनने वालों, एक गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग, बहुत कम चलाया जाता है रेडियो पर लेकिन हमारे प्रोग्राम में मैंने कई बार चलाए हैं, और इस तरह का नगमा है कि पहली बार किसी को आप देख रहे हैं जवानी में, हो सकता है बुढ़ापे में भी लिफ्ट द कैन रिलीफ दैट, और जिसे देखकर आपका दिल का जो घंटी है, जो तार है, सब बजने लगता है, आपकी देही एकदम फिदा, आपकी आंखों, आपके दिमाग, आपके दिल सभी फिदा है उस पर। तू बिल्कुल गया काम से उसे देखकर, दीवानेपन की भी हट पार करके, इस तरह का एक नगमा। और लड़की हैरान है कि अरे एक एक कहा हो ये। मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, हसीनों के पुजारी किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी की आवाजों में नगमा को आप सुनेंगे।

अयो रे गया काम से तेरा दीवाना, और लिपटा ले प्यार से मुझे ओ जाने जाना, क्योंकि तौबा तेरी ये जवानी है। और लड़की कहते हैं छोड़ो ना मेरा हाथ, और आपने तो बैना तोड़ दी मेरी कलाई, प्यार भरा छेड़छाड़ सो और दीवानेपन का क्या हठोटी है, इस गीत के जरिए बयान हुआ है। मजरू सुल्तानपुरी जी इन्होंने लिखा, मेरे प्यारे सुनने वालों, और किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी ने मिलकर गीत गाए हैं। मजरू सुल्तानपुरी जी के और एक नगमा हम आप तक पेश करने जा रहे हैं। गीत काफी पॉपुलर हुआ, लेकिन इन दोनों का जो करियर थे म्यूजिक इंडस्ट्री में चला नहीं उस वक्त, अब तो काफी पॉपुलर है, दोनों काफी पॉपुलर है। और हम बात कर रहे हैं द नेम दैट स्पेल्स मैजिक उदित नारायण और नाइटिंगेल अलका याग्निक। इन दोनों के नाम जो है सभी जानते हैं, उस वक्त बहुत कम जानते थे, लेकिन हाँ गीत मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ काफी लोगों ने पसंद किए थे और आज भी करते हैं। वही नगमा प्यार भरा सेवा में हीरो निवार दिल की आवाज में पेश करने जा रहा हूं।

जाने जा कहता है क्या ये बाहर का समा, कहे ले लो ये नजारे और बन जाओ हमारे मेरी सजना, और ला अपनी आंखों के जाम क्योंकि ये दिल परसों का प्यासा है, और भड़ के मिलन का नशा मेरा ये दिल तुमको बुलाता है। खूबसूरत आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक, और खूबसूरत गीत पॉपुलर सॉन्ग मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ सेवा में हमने पेश किया है। फिल्म का नाम सन्नाटा। मेरे प्यारे सुनने वालों, अभी आखिरी में एक गीत, इस घंटे का आखिरी गीत, उसके बाद ब्रेक होंगे, ब्रेक के उस पार आप सभी से जरूर हम मिलेंगे फिर, लेकिन आखिरी गीत एक गीत और होंगे मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ। कमाल के नगमाए इन्होंने भी लिखा है, साटाज बादशाह। लेकिन एक और बादशाह है जिसका नाम है राजेंद्र कृष्ण जी, इनका लिखा हुआ एक प्यार भरा छेड़छाड़ सॉन्ग सेवा में दिल की आवाज में पेश करने जा रहा हूं हसीनों के पुजारी किशोर कुमार और सुमन कल्याणपुर जी।

जी तुम भरे वो हो। सुमन कल्याणपुर और किशोर कुमार रजेंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ ये प्यार भरा छेड़छाड़ सॉन्ग जो आप तक हमने पेश किया है, सास भी कभी बहू थी। मेरे प्यारे सुनने वालों, इस घंटे का आखिरी गीत सुमन कल्याणपुर जी, एक डर भरा गीत मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ। सुमन जी गाएंगे फिल्म का नाम खुदा कसम। इस गीत के बाद ब्रेक, मेरे प्यारे सुनवाल, ब्रेक के उस पार आप सभी से फिर हम मिलेंगे जरूर से जरूर। हियर ऑन यू आर

0: क्या है चितचोर?
1: वन टू थ्री फोर।
0: क्या है चितचोर?
1: यू सिंग लाइक किशोर, बट शादी का दिन।
0: ओ यस, सितंबर 8।
1: ओह वेरी लेट
0: डार्लिंग, वेट।

0: सच है बिल्कुल,
1: तू है बुलबुल,
0: सच है बिल्कुल, यू आर वंडरफुल।
1: लग जा गले दुनिया जले, छम छम छम छम छ छम छ छम, गर्ल हम तुम पे दिल निसार करता है, रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है, रोज

तू है बुलबुल सच है बिल्कुल, यू आर वंडरफुल लग जा गले है गिल, हम तुमसे दिल निसार करता है और रोज रोज रोजी तुमको तो प्यार करता हूं। ऐ गर्ल तुम काहे को इनकार करता है। हसीनों की पुजारी किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी, ये मस्ती भरी लेकिन प्यार भरा गीत एक दूजे को इतनी प्यार की बयां, और वो भी मस्ती भरी रूप में दोनों ने मिलकर कहा है। और ये मस्ती भरी गीत का लिखक सॉन्ग राइटर द ग्रेट आनंद बख्शी जी है। खिलौना फिल्म का नाम, मेरे प्यारे सिनेमा वालों, खिलौना मूवी से हमने नगमा को निकाले। उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सिनेमा वालों, दिल की आवाज आप सुन रहे हैं लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रोटरडम से। और धीरे धीरे हो रहे हैं, मैं देखता हूं घड़ी की तरफ, हो नहीं रहे हैं इस वक्त 11 मिनट, जो 10:11 बीत चुके हैं और मैं आप सभी के साथ 11 बजे तक रहेंगे। प्रभा जी एट अमस्टरडम सेंट्रम, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही एंजॉय कर रहे हैं नगमाओं के साथ, मजा ले रहे हैं। एक खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, द ग्रेट हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ, जो मिलकर गाएंगे सुरों का बादशाह द लेजेंड पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी और सुमन कल्याणपुर। कि तुझे देखा तुझे चाहा और तुझे पूछा मैंने, बस इतनी खता है मेरी।

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

अनगिनत सालों से मेरी तुझसे एक पहचान है, अब गले मिल जाओ आकर इतना ही दिल में अरमान है। तुझे देखा तुझे चाहा तुझे पूजा मैंने, प्यार में बस इतनी खटा हमने की है और खटा क्या। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, महान कवि सॉन्गराइटर लिखे द ग्रेट हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ व्हाट अ सॉन्ग, क्या अल्फाजे हैं, क्या शब्द है। और जिस तरह से रफी साहब जी और सुमन जी ने मिलकर गीत गाए हैं, लाजवाब बेमिसाल। छोटी सी मुलाकात फिल्म का नाम। दिल की आवाज में मेरे प्यारे सुनने वालों, एक दर्द भरे गीत पेश करने जा रहा हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी बात पर छोटे छोटे बात पर या गलत फहमियों की वजह से एक दूसरे पर आप नाराज हो जाते हैं, खफा हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि, और खास करके हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म बनाते हैं, हीरो दो करते हैं और हीरोइन एक, और दो हीरो उसी पर फिदा हो जाते हैं। और ऐसे दो हीरो हैं जो फिल्म में दोस्त हैं, तो एक दोस्ती निभाने के लिए प्यार को फिदा करते हैं, और दूसरे हैं जो अनजान बनकर बहुत सारे और भी गलतियां करने लग जाते हैं। और जिसे सच्चा प्यार है उन सभी के दिल बस टूट जाता है। तो ये जिंदगी जो है मेरे प्यारे सुनने वालों, बहुत सारे इम्तिहान लेते हैं और कभी कभी इतनी हद तक कि हमारी जान भी ले जाते हैं। एक नगमा द ग्रेट आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ पेश करने जा रहा हूं, जो अनवर हुसैन, कमलेश अवस्थी और सुमन कल्याणपुर जी मिलकर गाएंगे। हियर ऑन यू आर, दिल की आवाज में।

की गली से बच के गुजरना, दिल की गली से बच के गुजरना, ये सोच लेना फिर प्यार करना, ये सोच लेना फिर प्यार करना, क्योंकि आशिकी भी इम्तिहान लेती है। हाँ जी, आशिकी भी इम्तिहान लेती है, और आशिकों की जान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। और खूबसूरत गीत, प्यार भरा लेकिन बहुत दर्द भरा हमने आप तक पेश किया है। आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ एक एक शब्द जो मिलकर गाए हैं सुमन कल्याणपुर जी, अनवर हुसैन और कमलेश अवस्थी। फिल्म का नाम नसीब, मेरे प्यारे सुनने वालों, नसीब। घर की तरफ मैं देखूं तो ठीक 10:30 का वक्त है। उजाला रेडियो पर आप चुन है, मैं हूं आपका यारों का यार रतन राम दुलारे पांडे, और यू आर क्यू स्टूडियो रतनधाम से एकदम लाइव एंड डायरेक्ट आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल की आवाज। रात्रि में 11 बजे तक आपका साथ हम देंगे। और मेरे प्यारे सुनल, आज ये प्रोग्राम हम बना रहे हैं, अगले प्रोग्राम जो हम सजाएंगे बनाएंगे आप सभी के लिए, वो है आने वाली शनिवार। हियर ऑन यू आर रात्रि में 7 बजे से 12 बजे तक 5 घंटे हमेशा की तरह लगातार सेवा करेंगे विद ब्यूटीफुल लोकल सॉन्ग द वीकेंड वाइब्स, जिसमें आप भी ऐप करेंगे और सभी ऐपर्स के नाम भी एक लोकल हम चलाएंगे, तो काफी मजा लेंगे आने वाले शनिवार। उम्मीद और आशा यही हम करते हैं कि आप सभी भी मेरा साथ देंगे, क्योंकि मिलकर प्रोग्राम बनाना उसमें और भी मजा है। कैफी आसमी जी, इनका लिखा हुआ एक जबरदस्त पॉपुलर रोमांटिक सॉन्ग पेश करने जा रहा हूं मेरे प्यारे सुनने वालों। लेकिन गीत चलाने से पहले मैं ब्रेडा का मफराओ एंड मनेर बिहारी जी को धन्यवाद कहना चाहेंगे आपके ऐप के लिए। सारदा जी अटलिस भी को हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। पूनम जी अज सिंह मार्थ डंकीवा भी आप कैप के लिए चुन करने के लिए, और भी हम थैंक यू कहना चाहेंगे, धन्यवाद। अनीता जी आइट उस प्रातः मोयो सूर्य नाम। एंजॉय दिल की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों। कैफी आसमी जी का ये पॉपुलर रोमांटिक सॉन्ग जो आप यकीनन पसंद करेंगे, रफी साहब जी और 19 कैलाशा जी को पेश करता हूं सेवा में।

को ना संभालूं तो सीने से लगा लूं तो होठों की जो लाली है उसको मैं चुरा लूं तो जुल्फों को संवारूं भी चेहरे को निखारा भी अब तो दे दूर जाने जा आपकी बाहों के सहारा भी और शोखी है नजाकत है नजरों में तेरा बहुत शरारत है ऐसा भी शर्माना क्या बस कह दो कि मोहब्बत है और ये दुनिया कितनी रंगीन दुनिया है इस दिल में एक सपना सा जगा है इजाजत हो तो बता दूं बहुत प्यार भरा नगमा मेरे प्यारे सुनने वालों और प्यार भरे लवली जो अल्फाजे हैं कैफी आसमी जी के कलम से लिखा गया और मिलकर गीत गाए हैं द लेजेंड शुरू को बादशाह पटना श्री मोहम्मद रफी साहब जी और नाइटिंगेल आशा जी परवाना फिल्म का नाम राजा मेहंदी अली खां इनका लिखा हुआ एक रोमांटिक सॉन्ग संगीत की देवी स्वयं सरस्वती माँ लता जी की आवाज में गीत को हम पेश करेंगे हीरोनिवार दिल की आवाज में

धड़का है दिल में प्यार तुम्हारा, अभी अभी और चमका है आरज़ू का खूबसूरत सितारा, अभी अभी। संगीत की देवी लता जी की आवाज और राजा मेहंदी अली खान का लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग संगीत की देवी ने गाकर सुनाए। जाल फिल्म का नाम, मेरे प्यारे सिनेमा जाल। अब मैं देख रहा हूं प्रोग्राम में दो तीन नगमाएं हैं, सुमन कल्याणपुर जी का टुगेदर विथ रफी साहब जी, ये नगमाएं सेवा में पेश करने जा रहा हूं। पहला गीत जो या पहला अगले गीत जो है फिल्म सूरज का एक नगमा है, सूरज, हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ, सुमन कल्याणपुर जी और द लेजेंड पटना श्री मोहम्मद रफी साहब जी। इतना है तुमसे प्यार मुझे ओ मेरे राजदार, जितने की आसमान पर तारे हैं बेशुमार।

सिवा किसी को ना लाएंगे निगाह में, लाखों हसीन आए जवानी की राह में, लेकिन सदियों से कर रहा था तुम्हारा ही इंतजार, क्योंकि इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राजदार। असर जयपुरी जी का लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग मिलकर गीत गाए हैं सुमन कल्याणपुर जी और द लेजेंड पद्माश्री मोहम्मद रफी साहब जी। सूरज फिल्म का नाम। मेरे प्यारे सुनो, दो आखिरी गीत हम पेश करेंगे। इस दो आखिरी गीत के बाद हम यहां से रुखसत होंगे। अगले गीत भी हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ गीत है, निकालेंगे फ्रॉम द मूवी अप्रैल फूल, और सुमन कल्याणपुर जी और रफी साहब जी गीत गाएंगे कि तुझे प्यार करते हैं तो करते रहेंगे, कि दिल बन के दिल में आपके मैं धड़कते रहेंगे। और उसके बाद में मेरे प्यारे सुनने वालों, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत मैं समापित करूंगा उस गीत के साथ जो रफी साहब जी और सुमन कल्याणपुर जी ने भी मिलकर गाए हैं, कि नाना करते प्यार लेकिन तुम ही से देखो ना कर बैठे। रोमांटिक सॉन्ग फ्रॉम द मूवी जब जब फूल खिले। मेरे प्यारे सुनवाल, आज साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। हम आप सभी से फिर मिलेंगे आने वाले शनिवार। साथ देने के लिए जैसे मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। रहा फूल तो फिर खिलेंगे, और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज़। टेक केयर और रिमेंबर, आई लव यू ऑल।

लक्ष्मण जी इट्स स्टीफनिंग डंकीवेल, आपके ऐप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चून करने के लिए। और आपको तो मालूम है कि लक्ष्मी जी हमारे दिलों में है। शुभ रात्रि आप सभी को।

अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 vragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: इसलिए कि शर्मा न जाए।
1: उजा रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ओतु में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे अबे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैहक द बेस्ट उजाला रेडियो तुझे

ये दिल बना है शीशे का, पत्थर पे इसको मत फेंको। देखो जी देखो, एक बार इस तरफ देखो, ये दिल बना है शीशे।